ये यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो है, सरकारी ज़राए से आपकी ज़बान में सेहत की मोतबर मालूमात। सरकारी ज़राए से सेहत की ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से WHO के डायरेक्टर जनरल ने सेहत के निज़ाम की फराहमी, हंगामी इमदाद और ज़हनी सेहत को आगे बढ़ाने पर मजबूत तआवुन को तस्लीम करने के लिए उर्दन का दौरा किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रियासतहाए मुत्तहिदा के इनखिला के नोटिफिकेशन पर WHO का बयान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेविड नाबारो को खराज तहसीन पेश करना। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक दवाई याद बाय हर्बल KNP वन कैप्सूल 30 गिनती की बोतलें वापस मंगवा रही है। वजह, मंजूर शुदा NDAA के बगैर मार्केट की गई प्रोडक्ट में मंशियात के गैर ऐलानिया अज्जा डेक्सामिथासोन और साइप्रोहेप्टोडियन शामिल हैं। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक फूड प्रोडक्ट रिकॉल मिडवेस्ट पॉल्ट्री सर्विस COH और LELECTRIC दर्ज जैल कन्फिग्रेशन में पैक किए गए ग्रेड ए के सफेद इन शेल चिकन अंडे वापस मंगवा रहा है। एक क्रोगर मीडियम 12 अंडे नेट WT। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी की रोकथाम, मच्छर मलेरिया, डेंगू और दीगर बीमारियां फैला सकते हैं। कीड़े मार दवा से इलाजशुदा जाल के नीचे सोना, घर के आसपास खड़े पानी को हटाना और रिपेलेंट का इस्तेमाल आपके खतरे को कम करता है। अगर आपको किसी ऐसे इलाके में तेज बुखार है जहां मलेरिया होता है तो जल्द टेस्ट और इलाज करवाएं। इब्तिदाई देखभाल जान बचाती है। हम किस तरह तस्दीक करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो पर हर तबका सेहत के सरकारी हुकाम की अवामी तौर पर दस्तियाब रहनुमाई से बनाया गया है और नशर करने से पहले उसका जायजा लिया जाता है। हम हकायक या आदाद शुमार ईजाद नहीं करते हैं। जब हम हेल्थ अलर्ट का इश्तराक करते हैं तो ये एक नामजद सरकारी जरिया से आता है। आप universalhealthradio.org पर मजीद जान सकते हैं। हाथ धोना। अपने हाथों को साबुन और साफ पानी से धोना बीमारी से बचने के आसान तरीन तरीकों में से एक है। अपने हाथों के तमाम हिस्सों को कम से कम 20 सेकंड तक साफ करें, खास तौर पर खाने से पहले और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद। अगर साबुन और पानी दस्तियाब नहीं है तो अल्कोहल पर मबनी हैंड रग भी काम करता है। साफ हाथ बहुत से इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने में मदद करते हैं। इसहाल और जबानी रिहाइड्रेशन। छोटे बच्चों के लिए इसहाल खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जैसा कि हिदायत के मुताबिक मिलाया जाता है, इस खोए हुए सयाल की जगह ले लेता है और जिंदगी बचाने वाला हो सकता है। बच्चे को सयाल और दूध पिलाते रहें। पाखाना में खून, बार बार उल्टी, धंसी हुई आंखें या बच्चा पीने से कासिर होने की सूरत में फौरी तौर पर देखभाल करें। नौजायदा को दूध पिलाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैदाइश के बाद पहले घंटे के अंदर दूध पिलाना शुरू करने और पहले 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाने की तजवीज़ करती है। माँ का दूध बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है और मुकम्मल ग़िज़ाइयत फराहम करता है। दिन रात मांग पर खाना खिलाना। अगर खाना खिलाना तकलीफ दे है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो किसी हेल्थ वर्कर से मदद तलब करें। हमल में खतरे की अलामत। हमल में कुछ अलामत को बगैर किसी ताखीर के देखभाल की जरूरत होती है। उनमें अंदामे निहानी से बहुत ज्यादा खून बहना, धुंधली नजर के साथ शदीद सर दर्द, तेज बुखार, पेट में शदीद दर्द या बच्चे का मामूल से बहुत कम हरकत करना शामिल हैं। अगर इनमें से कोई भी हो तो फौरन सेहत की सहूलत पर जाएं। बाकायदगी से कबलस पैदाइश चेकअप में शिरकत से माँ और बच्चे दोनों को महफूज रखने में मदद मिलती है। ये सेहत की मालूमात है, तिब्बी मशवरा नहीं। ये यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो है, सरकारी ज़राए से आपकी ज़बान में सेहत की मोतबर मालूमात। सरकारी ज़राए से सेहत की ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से WHO के डायरेक्टर जनरल ने सेहत के निज़ाम की फराहमी, हंगामी इमदाद और ज़हनी सेहत को आगे बढ़ाने पर मजबूत तआवुन को तस्लीम करने के लिए उर्दन का दौरा किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से